सतगुर प्रसाद। सोदार तेरा कहा सो कर कहा, जित मैं सर्व संभाली। वाजे तेरे नाद अनेक असंखा।

पवन तुदनो खंड मंडल ब्रह मंडाव कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।

सैल पत्थर मैं जंत पाए ता कारिजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया।

चरण कवण खलावे कवण चुगावे मन मह सिमरण करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाई है।

कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ द मुझे भरे है, मरण काल का त्रास ने भरे है।

10 फरवरी लड़दिया लौड़ा वेला हो गया, दौड़ के दो डोगरे तोड़ गया बेड़ियां, बेड़ियां का खालसे की किस्मत का लक तोड़ दिता, खालसा राज की बर्बादी का पूरा मुढ़ बज गया। इस मैदान जंग में लड़दिया सरदार शाम सिंह के 3 घोड़े शहीद होए, उन्हों का साई समाधी खान जदों सरदार का घोड़ा जख्मी होकर तुर जाता इस दुनिया चो एक होर घोड़ा पेश कर दिता, लड़दिया लड़दिया सरदार शाम सिंह आखिर 7 गोलियां खा के धरती से छाती परने डिगा और प्राण पखेरी उड़न तो पहला उसने आख्या महाराजा रणजीत सिंह अज तुसी होंगे ये लड़ाई असं जित ली होंगी। शाह मुहम्मदा एक सरकार वाजों फौजा जित के अंत में हारियां, टुटे हुए दिल नाल वहाबी खान सभरावां दे मैदाने जंग विचों रातों रात अटारी पहुंचा, सरदारनी दासां नूं दुख भरी खबर महाराजा रणजीत सिंह के जरनैल सरदार शाम सिंह अटारी की शहादत भी इन्हां अखरां विच इहो सुनाई, एक एक शिमा मंगा।

0: 家的好菜啥
1: गुरु प्यारे जदो धन गुरु अर्जन देव पातशाह चंदू दी गल नाना मने वो कह रहा सी भी मेरी लड़की दा रिश्ता ले लो पर सतगुरा ने दिल्ली दी संगत दी बेनती नू हुकम नू मनिया सी भी सतगुरु देखियो किते रिश्ता ना ले लियो इन्हें गुरु घर नू नीवा दस्या है ते गुरु प्यारियो अज चंदू धन गुरु अर्जन देव पातशाह नू अपनी कैद विच रख के अज ओने एक भट्ठी तो रेत मंगवाई गर्म गर्म ते गुरु प्यारियो गर्म गर्म रेत सतगुरां नू बाहर ले आके इस अग अंगियार गर्म रेत उते बिठा दिता ते सिपाहियां ने चंदू दुष्ट दे हुक्म अनुसार सतगुरां नू जदों गर्म रेत उते बिठाया है ना ता ए जुल्म वेख के भाई लंगाहा अते प्राणा दौड़ के आए कहंदे भी चंदू तू सतगुरां नू गर्म रेत उते ना बिठा गर्म रेते उते असी पहने हैं गुरु जी साडे शरीर उते खले हो जानगे असी सतगुरां दे उते कष्ट अखी नहीं वेख सकते पर चंदू ने गुरु प्यारे बड़ा हंकारी सी बड़ा दोष्ट सी सिखां नू डंडे मरवा के पिछे हटा दिता है ते गुरु प्यारे सतगुरु गर्म रेते उते बैठे ने अडोल बैठे ने बाणी पढ़ रहे ने सतगुरु राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ जदों मिठी सुर नाल सतगुरु शब्द पढ़ रहे ने ता चंदू होर गुस्से विच आया कहिंदा भी इन्हां नू रेता गर्म नहीं लग रहा ते रेते दे कड़छे भर भर के इन्हां दे उपर पाओ ता सतगुरां दे उत्ते रेते दे कड़छे भर भर के चंदू दे आदमी पा रहे ने ते गुरु प्यारियो शरीर सी शरीर सारा छाले छाले हो गया है मक्की दे पुजे हुए खिलिया वांगू बन गया है ते गुरु प्यारियो इस अत्याचार नू वेख के सब वेखण वाले सुन वाले त्राह त्राह कर रहे ने रेते तो उठा के सतगुरां नू फेर कोठड़ी विच बंद कर देता है ते आप चंदू महिला नू चलिया गया है ते जदों सतगुरां नू दूसरे दिन तत्ती लोह ते बिठाया है ना सतगुरु बैठे वाहिगुरु कर रहे ने जदों साईं मियां मीर जी नू खबर होई वो आप चल के सतगुरां कोल आए कहन लगे के सतगुरु महाराज ए की पाणा वरता रहे हो इन्हां दा दुष्टां दा नाश क्यों नहीं करदे धन गुरु अर्जन देव पातशाह ओ शहीदां दे सरताज कहन लगे साईं जी ए सारा कुछ उस निरंकार दे पाणे विच हो रहा है ओदी खेड है ना साडे वस विच है कुछ ना इन्हां दे वस विच कुछ है ते उत्तर सुन के साईं मियां मीर नमस्कार करके धन धन कहंदे होए अपने स्थान नू चले गए उधर गुरु प्यारियो दोस्त चंदू ने अपने घर सलाह कीती भी इन्ने सख्त तसीहे नाल भी ए मेरे अगे नहीं चुके हुण इन्हां नू कल नू गऊ दे कच्चे चमड़े विच बंद करना है इन्हां दा धर्म भ्रष्ट करके इन्हां नू मारना है चंदू ने हुक्म दे दित्ता है एक आदमी नू भई सवेरे किसे नू आख के

गुरु प्यारियो जदों धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह ग्वालियर दे किले विचों बाहर आए 52 राजियां नूं उन्हां ने किले विचों कैद विचों छुड़ाया ता दिल्ली आए सतगुरु जहांगीर नूं मिले। जहांगीर ने सतगुरां नूं चंदन दी चौकी ते बिठाया, नमस्कार कीती ते गुरु प्यारियो धन्नवाद कीता के सतगुरु तुसी मेरी रखिया खातर मेरी साड़ सती नूं खत्म करन वास्ते मेरी खातर किले विच बैठ के जप कीता है। गल्लां करदे करदे जहांगीर दा ध्यान सतगुरां दे हत्थां वल गया। सतगुरां दे हत्थां विच इक सिमरना बड़ा सोहना सी ते गुरु प्यारियो जहांगीर कहिंदा कि पातशाह आ सिमरना बड़ा सोहना, एक मणका दे दिओ, मैं निशानी वजो रख लवांगा। ते सहज श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह कहंदे कि जहांगीर एदे नालों भी बड़ा कीमती है ते सुंदर 108 मणकियां दा सिमरना साडे पिता जी दे गल विच हुंदा सी, जिहड़ा चंदू ने उन्हां नूं अपने घर विच कैद करके शहीद करके ओह खो लिया सी, लै लिया सी, ओह मंगवा लवो सारा ही रख लैणा। सतगुरां तों इह गल सुणी कि गुरु प्यारियो जहांगीर ने उसे समय एक सिपाही भेजिया चंदू नूं बुलाउण वास्ते। चंदू आया, जहांगीर कहिंदा वी चंदू जिहड़ा साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे गल विच सिमरना सी ओह तेरे कोल आ लिया दे। ते गुरु प्यारियो जहांगीर दा हुक्म सुन के चंदू घर गया, फिर वापस आ गया। आके कहंदा महाराज पातशाह मैं सारी जगह भाल कर लई है पर नहीं मिलिया, ओ सिमरना ओ माला नहीं लभी। ते चंदू दी गल सुन के छेवें सतगुरु कहंदे कि जहांगीर असीं अपना कोई सिख इहदे नाल भेज देने आ, ओ लै आवेगा, आपे लभ लियावेगा। नाल चलिया गया ते गुरु प्यारियो एक सरकारी आदमी भी नाल गया, भाई जेठा जी नूं सतगुरां ने भेज दिता है ते भाई जेठा जी अपनी शक्ति नाल चंदू दे घरों लुकाई होई माला कढ लियाए ते जहांगीर नूं दे दित्ती। चंदू जिहड़ा कचहरी विच दरबार विच डरिया होया बैठा सी होर डर गया, कहन लग्या मैनू याद नहीं रहा कि यह गुरु जी दी माला है। ते गुरु प्यारियो साईं मियां मीर जी ने भी जहांगीर नूं यह आख्या सी कि जहांगीर तेरे राज विच चंदू ने बड़ा वड्डा पाप कमाया है। ते जदों आ गल होई ना माला वाली तां जहांगीर नूं बड़ा गुस्सा आया, गुनाही समझिया है। जहांगीर पातशाह नूं कहंदा कि सतगुरु ए आपदा मुलजम है, इनू फड़ के जो मर्जी करो जो मर्जी दंड दियो, फिर ना तुसी मैनू कहना अपने दोषी दा बदला इत्थे ही लै लवो, मैं इसकी कोई सहायता नहीं करांगा। ते गुरु प्यारियो पातशाह दी गल सुनी सतगुरां ने भाई जेठे नूं आख्या कि इस गुरु धरोही नूं डेरे लै चलो। ते गुरु प्यारियो भाई जेठे ने चंदू दियां मुश्कां बन लईयां अते अपने डेरे मजनू किले लै आए। ते उधरों दूसरे दिन सतगुरां ने तैयारी करन दा हुक्म दे दिता। जदों दूसरा दिन आया ता जहांगीर ने चंदू दी इस्त्री अते पुत्र नूं फड़ के भी सतगुरां दे हवाले कर दिता।
ते आखिया के पातशाह इन्हां नूं भी दंड दिओ। ते गुरु प्यारिओ पातशाह कहिंदे बई गुनाह तां इन्हें चंदू ने कीता है, इन्हां नूं दंड नहीं देना, इन्हां नूं जान दिओ। उन्हां नूं छड़ दिता है, बख्श दिता है। ते गुरु प्यारिओ सतगुरु चंदू नूं नाल लैके लाहौर आ गए। दो दिन गुरु जी दे दर्शन करने वास्ते अमृतसर दी अते नेड़े दे पिंडां दी संगत आउंदी रही। लोक चंदू नूं कैद विच पिया होया वेख के उस नूं बहुत लानता फिटकारा पाउंदे। चंदू बेबस होके सब दियां सुन के नीवी पा के बैठा रहिंदा। ते गुरु प्यारिओ पातशाह ने सिखा नाल सलाह कीती भी चंदू नूं लाहौर दे बाजारां विच फेर के ओनू नशर करना। आग्या लै के सिखा ने चंदू नूं संगली पा के ओदा मूंह काला करके बाजारां विच लै आंदा। लाहौर दे लोग आम जनता जिन्हां नूं पता सी भी इस पापी ने किस बुरी हालत नाल गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शहीद कीता सी, सारा शहर चंदू नूं गालां कढ रहा है, फटकारा पा रहा है। जदों इस तरह सिख चंदू नूं बाजारां विच फेरदे रहे तां अचानक उस भड़कूंजे दे भाठ कोलों ओदी भट्ठी कोलों जदों चंदू नूं लै के लंघन लगे तां गुरु प्यारिओ ओ भड़कूंजा जिस कोलों चंदू गर्म रेता मंगवाया करदा सी सतगुरां दे शीश उत्ते पाउण वास्ते जदों लंघन लगे तां उसने उठ के चंदू दे सिर विच ओही कड़छा गुस्से नाल मारिया। आखिया पापिया तू मेरे पासों गुरु जी उत्ते गर्म रेता पवा के बजर पाप करवाया, मैं उसका बदला लैके छड़ांगा। ते गुरु प्यारे ओ चंदू ता अगे ही मरिया समान सी, इस कड़छे दे वजन नाल उस दे सिर दे खोपर दो टुकड़े हो गया है। ते ओ तड़फ तड़फ के ओ पापी उत्थे ही मर गया है। ते गुरु प्यारे ओ धन गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्हां नूं शहीदां दे सिरताज कहा जांदा है, ते गुरु प्यारिओ इन्नी गर्मी विच सतगुरां ने शहीदी दित्ती ते अज ओ गुरु दीआं संगतां सतगुरां दी शहीदी नूं याद करदीआं ने, थां थां छबीलां लाउंदीआं ने, घुंघणीआं दा लंगर लाउंदीआं ने, प्यासियां दे मूंह विच मिठा अमृत जल पाउंदीआं ने। ते ओ चंदू ओनू अज कोई याद करन वाला भी नहीं। ते गुरु प्यारिओ सतगुरां दी ऐसी शहीदी ऐसी कृपा अज थां थां ते शबीदां लग रही है।

प्यारेओ, सहज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठन लगे ने, ते तत्ती तवी सतगुरां नू सवाल कर रही है, ते सतगुरु उदे सवाला दा जवाब इउं दे रहे ने।

0: केवोदीरन गिली तरती देवस निक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह स्वा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3085.

पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोए धोती बस्त्र कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलंग तस्य जन्म से जावद ब्रह्म ना बिंदते।

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है, क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं ता एक शब्दं।

रहंत जन्म हर दर्श लीना, पाजंत नानक शब्द बीना, कहंत बेदा गुणंत गुनिया, सुनंत बाला बहु विद प्रकारा, दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपा।

मात पित भरात है, नह चिंता कछ लोक कह, नह चिंता बनता सुत मीत है, परवित माया संबंधन है, दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जी प्रतपाल कह, अनित्य वितंग अनित्य चितंग, अनित्य आशा बहु विद प्रकारं, अनित्य हितं अहं बंदं, परम माया मलनंग बेकारं, फिरंत जोन अनेक जठरागन, नह सिमरंत मलीन बुद्धिहं, हे गोविंद करत माया, नानक पतत उदारन साध संग मह, गिरंत गिर पतत पतालं, जिलंत दे दीप्य वैश्वान्तर है, बहंत अगाह तोयं परंगं, दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरण है,

है, कर्म करत महा निर्मल है, जन्म मरण अरहंत स्वरूपता, सुख समूह अमोघ दर्शन है, शरण जोगं संत प्रिय नानक, सो भगवान खेमं क्रोत, पाशं क्रोत अग्रणी वह, निरासंग आस पूर्ण है, निरतन भयं तनवंत है, रोगियं रोग खंडन है, भगत्यं भगत दानं, राम नाम गुण कीर्तन है, पार ब्रह्म पुरख दाता है, नानक गुर सेवा क्यं ना लभ्यते, अतरंग तरंग धारण है, निरतनंग तन नाम नरहर है, अनाथ नाथ गोविंद है, बलहीन बल केशव है, सर्वभूत दयाल अचुत, दीन बांधव दामोदर है, सर्वज्ञ है पूर्ण पुरख भगवान है, भगत वच्छल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, जा चंत नानक कृपाल प्रसादं, नह बिसरंत नारायण है, नह समर्थं नह सेवकं, नह प्रीत परम पुरखोत्तमं, ताव प्रसाद सिमरते नामं, नानक कृपाल हर हर गुरं, परन पोखण करंत जिया, विश्राम साधन देवंत दानं, सृजंत रत्न जन्म चतुर चेतन है, वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है, सिमरंत नानक हर हर हरि, अनित्य है रचना निर्मोहते, दानं परापूर्वेण पूछन्ते महीपते, विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है, नानक चिरंकाल दुख भोगते, वृथा अनुग्रहंग बिंद है, जस्य सिमरन रदंतर है, अरोग्यं महारोग्यं।

पीवतं संतना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान भंग नह सुबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख।

आद समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमृता आवदह गुण गोबिंद रमण कोट गुर शब्द कर चरमण है अरूढ़ते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नाच विद्या निदान निगमं नाच गुणज्ञ है।

कंठरमणीय राम राम माला हस्त ऊच प्रेम धारणी जीही पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी गुरमंत्र ही नस्य जो प्राणी तिरगंत जन्म प्रस्तन है कुकर है सुकर है गर्द बह काक है सर्पन है तुलखल है चरनार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण है कीर्तनंग साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूतन है नच दुर्लभंग धनंग रूपंग नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है नच दुर्लभंग भोजनंग।

सुबिंजनं नाच दुर्लभं स्वास अंबर है नाच दुर्लभं सोत मित्र प्रात बांधव नाच दुर्लभं बनता बिलास है नाच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नाच दुर्लभं चतुर चंचल है दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धं साध संग कृपा प्रभं जात कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक है सर्वत्र रमणं गोविंद है नानक लेप शेप ना लिपे अति भिख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजन है दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बामन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सुवजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैर है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत भावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध सुवजन है अजापो गंत कंद मूलं बसंते समीप केह रह ततरगते संसार है नानक सोग हर खंग व्यापते सलं सिद्रं कोट बिघ्नं अपराधं किल बिखमलं परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापतं मृत्यु जन्म परमंत नरक है अनक अपावं न सिद्ध्यति निर्मलं साध संग है जपंत नानक।

ध्यान देत प्रभु पूर्ण है। निराश आस करन सगल अर्थ आलिए, गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह। दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है, दुर्बचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है। अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै है, पै अत्वियं महानगर बासं धर्म लक्षण प्रभमय। साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं। हे अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है, गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है। हर करन हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है। हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी परमावन है, चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है। अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है, तब पै विमुंचित साध संगम ओत नानक नारायण है। हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते, विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट है। अनक शासन ताड़ंत जमदूत है, तब संगे अदमंग नर है। दीन दुख भंजन दयान प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत। हे लोबा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोल पे तावंत जिया बहु प्रकारं, अनक भांत बहु डोलते। नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तब लज्जिया। अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं, असाज्यं साज समझ्य। त्राहे त्राहे सरल स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक माया बस्तीर्ण है। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है। ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है। वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर राध नानक हर हर हरे। हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निदान जगद गुरु, हे संसार ताप हरण है करुणा में सब दुख हरु। हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करु। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधव है। चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है। साध संगेन तरणं नानक महासागर भय दुत्तर है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्व रखिया गुरदयाल है भय दुख बनासन है। भगत वछल अनाथ नाथी शरण नानक पुरख अचुत है। जेन कला धार्यो अकाशं वै संतरं काष्ट बेस्तं, जेन कला सत सूर नक्षत्र ज्योतियं सासं शरीर धारणं। जेन कला मात गर्भ प्रतपालं नह सिदंत जठर रोगण है। तेन कला अस्थम्भं सरोवरं नानक नह सिजंत तरंग तोयण है। गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन है। लब्धिहं संत संगेन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है। मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह। सागरं लगंत पिंगं ताम प्रकाश अंध कह। साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि। तिलक हीनंग जथा बिपरा अमर हीनंग जथारा।

अचर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत बेदा ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत सादर ध्यं अच्युत बुजंत नानक बड़भागी है उद्यान बसलंग संसार संबंधी स्वान सियान खर है विखम स्थान मन मोह मदन महा असाध पंच तस कर है हीत मोह पै भरम भ्रमण अहं फांस तीखियन कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहन कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलियं रोग खंडन है साध संगेन गुण रमत नानक सरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलं मद्र मनुखियं हृदयं भूम वैरन है निमंत हुवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजन है आचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासति रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमंत परमंत बहु जन्म हारियु शरण नानक करुणामय हे जिहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वं तनी नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरं सहकंगता हरियं बूडंगता तरियं ऊनंगता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निफल है पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उच्चरणं सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म कर्त से सूकर है मते समेव चरणं उदरणं पै दुत्तर है अनेक पातक

कर्पूर पोहप सुगंधा परस मनुख्य है देहं मलीनं मज्झा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञानणु परमाणु परजंत अकाश दीप लोह से खंडन है गशेन लैन परेण नानक बिना साधु ना सिद्धयति जानो सत हवन तो मरनो दृष्टेन मिथ्या कीरत साथ चलंथो पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मृतेख बांध वह लब्ध हम साध संगेन नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैला गर संगेन निम बिरख से चंदन है निकट बसंतो बांसो नानक हम बुद्ध ना बोहते गाथा गुम्फ गोपाल कथं मथं मान मर्दन है हतं पंच सतनेन नानक हर बाणी पर हारन है बचन साध सुख पंथा लहंता बड कर्मन है रहंता जन्म मरणेन रमण नानक हर कीर्तन है पत्थर पुरजेन चढ़ियं नह जड़ियं पेड़ संपता नाम बिहून बिखमता नानक बहंत जोन बासुरो रैणी पावनी साध संगेन लभंतंग बड भागन है हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर नह व्यापन है गाथा गूढ़ अपारं समझनं बिरला जन है संसार काम तजनं नानक गोविंद रमनं साध संग मह समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानं नानक कुल समूह उदारन है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोविंद है नानक लब्धं बड भागन है हर लब्धो मित्र सुमित्तो विदारन कदे ना चित्तो जाका अस्थल तोल अमित्तो सोई नानक सखा जी संग कित्तो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमतब्य है हृदय गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सा

तलै तर सोहती दहन दिस चमकै बीजल मुख को जोहती खोजत फिरो बदेश पियो कत पाइय हर हां जे मस्तक होवे भाग ता दर्श समाई है दिथे सबे थान नहीं तुद जेहया बदहो पुरख बधात ता तू सोहया वस दी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हां नानक कसमल ज

तिसै कहो आही है बन बन फिरते उदास बूंद जल कारनी हरे हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहार ने मित का चित अनूप मरम ना जानी है गाहक गुनी अपार सो तत पछा।

पावह सच तना सुपने ऊ भी पही गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला खोजो ताके चरण कहो कत पाई है हर हां सोई जतन बताए सखी प्रयो पाई है नैन ना देख है साध ते नैन बेहालिया करन ना सुनही नाद करन मुंड कालिया रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटी है हर हां जब बिसरे गोविंद राय दिनो दिन कटी है पंकज फाथे पंख महामद गुंफिया अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया है को ऐसा मीत जे तोरे बिखम गांठ नानक एक श्री धरनाथ जे टूटे ले साठ तामो दशा अनेक प्रेम प्रभ कारणी पंच सतावह दूत कमन विद मारनी तीखण बाण चलाए नाम प्रभ त्याई है हर हां महा बिखादी कात पूर्ण गुर पाई है सतगुर कीनी दात मूल नानक खुटई खावो हो पुंचो हो सब गुरमुख छुटई अमृत नाम निदान दिता तुस हर नानक सदा आराध कदे ना जाहे।

पच साजन मन आनंद नानक नाम जप पावन पतत पनीत कतह नहीं सेवी झूठे रंग खुआर कहां लग खेवी है हर चंदौरी पेख काहे सुख मानिया हरहा हौ बलिहारी तिन जे दरगह जानिया कीने कर्म अनेक ग्वार बिकार कन महा दुर्गंधत वास छठ का शार तन फिर तो गर्भ गुबार मरन नह जा नहीं हरहा हर चंदौरी पेख काहे सच माने जिसकी पूजा औध किसे कौन राखे वैदक अनक उपाव कहां लो पाखे एको चेत ग्वार काज तेरे आवई हरहा बिन नावे तन शार बिरथा सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल को दीजई जिसे प्राप्त हुए

की दम के हो होती साथ रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम।

आहे। नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहे। लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चीत बेहाल। नीच कीच निमृत कनी

तो दया गए अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कौन नानक सब तेरी वडियाई आई।

0: काशीनाथ कन्या दुर्गत मंदिर मित्र स्थान उठने की जागरूकता गुरमुख प्यारे
1: भाई रे इस मन को समझाए भाई रे इस मन को समझाए ए मन आल

दिल जो गई कुछ लोग बसेंगे रेणी रहे सोई दिल मेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिंह कहा रहत बिना दर चोटा खावा रहत बिना तरहाई जानो रहत बिना जर पूछ खानो रहत बिना जगमो फरमाई रहत बिना नर नर के जाई रहत बिना सुख समू नाल तेरे सुदृढ़ कर भाई रे इस मन को समझाए भाई रे।

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

गावन जति सती संतोखी गावन वीर करारी गावन पंडित पढ़ने रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पायाले गावन रतन उपाय तेरे आठ तीर्थ नाले गावें जोत महाबल सूरा गावें खाणी चारे गावें खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदनो गावें जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चतन आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहब साचा साची नाई है पी होसी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर करू जन सी माया जिन उपाई कर कर वेख किता प्रणाम जब तस दी वड्याई जो तस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहब पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पद जोड़ी ध्यान की करे बिभूत किंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमा

भगत ज्ञान दया भंडारण कटकट बाजय नाद आप नाथनाथी सब जानकी रद सदरा साध संजोग बजोद कर चलावे लिखे आवे भाग आदेश दशादेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेश भगत ज्ञान दया भंडारण कटकट बाजय नाद आप नाथनाथी सब जानकी रद सदरा साध संयोग वियोग कार चलावे लेखे आवे भाग आदेश दशा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेश एका माई जुगत व्याई दंचले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जब तस भावे तब चलावे जब हो वह फरमान ओ वेखै ओ ना नजर न आवे बहुता हे बिडान।

ज्ञान खंड में घन प्रचंड हो जिसे नाद विनोद गुड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप हो जिसे घाट घड़ी है बहुत अनूप ताकियां गलां कथियां न जाही जे को कह पिछे बसदाई तिथे तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरस दंग की शुद्ध कर्मखंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जूद महाबल सूर तिन मह राम रह भरपूर तिथे सीतो सीता महमा माहे दाग रूप न कथने जाए ना ओह मरह न ठग जाहि जिनके राम मसे मन माहे तिथे भगत बसें गे लोग करे आनंद सच मन सोए सच खंड बसे निरंकार कर कर विखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर पंड जे को कथे दंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम दिवे दिवकार विखे विखे कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीर जिसने आरु अहरण मत भी दहतियारु पाओ खला दब दाओ पांडा पाओ अमृत तत टाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणे पिता माता दर्द महात दिवस रात दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुर आईया वाच धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले के

तात्मात्म जात जाकर जन्म मरण विहीन जकर बकर फिर जदर जाक मानी प्रतीन लोक चौदां के विखे जग जापी जय जाप आदि दीवन आदि मूर्त सप सब जय थाप परम रूप वनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो सुयम भवगणन भंजनहार कालहीन कला संयुक्त कल पुरुख देश धर्म दस परम रायत पूजल कपेश अंग रघन रंग जय कर जात बदना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी कान वस्तत एक पुरख बतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंग ही न पंग नातम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व गोप्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ध्यान पेख सर्व शास्त्र न जानी जे रूप रंग परम वेद प्राण जाकह नेत भागत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वोचित मद पार शांत प्रसाद गुणगान उदार महिमा पार आसन पंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निशन अनाश आजन बाह राजान राज पानन पान दीवान दीव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन वालु रंकान रंक कालन कालु अनुभूत अंग अपाप अंग गात मित पार गुणगान उदार मुनगान प्रणाम निरपय काम आत दुत प्रचांड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्ब परनाड्य आन रंड बाडे आंचा जरी छंद गव प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे कामे पुजंग प्रयात छंद चदर जकर करता चदर जकर हरदा चदर जकर दाने चदर जकर जाने चदर जकर वरती चदर जकर भरती चदर जकर पाले चदर जकर काले चदर जकर पासे चदर जकर वासे चदर जकर माने आए चदर जकर दाने आए चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न गाय जन्म न जाय न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दृशा गृशा भगवती शांत दग प्रसाद कथते के आशज देश है के अभिज बेस है के अगज कर्म है के अभिज भरम है के अभिज लोक है के अदित सुख है के अवतूत वर्ण है के भूत करण है के राजंग प्रवाह है के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्वा वर्ण है के जगतंग कृति है के क्षत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपवन उपाय के आदो देव है के आप देव है के चतुरंग भीन है के कह दीन है के रोजी रिया कर ही मेरे हा कह के पाक भी है वह के कह बुल गह वह के आप बुल गुना है के शाह निशाह है के कारण गुनंद है के रोजी दहन है के राज करीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने आए के सर्वत्र दाने आए के सर्वत्र गाउन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र माने है सदैव प्रधान है के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वंग कली मैं के परमंग फे मैं के अगलोला मैं के सैव कला मैं के उसन वजू है तमाम दृजू है हमेशन सलाम है श्री कदम दाम है गरीब नस्कारता है गरीब परस्ता है बलंदल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल

मामा रुजगोल धान है हरी फल जी मर जाए कुछ की ना नेकल तरंगा पेद है पंग है आज ही जल ने वाज है कि नीमल खराज है निरुक्त स्वरूप त्र मुक्त बभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सुदैव स्वरूप है पेदी अनुभ है समाज तो ब्राज है सदा सर्वसाज है समाज तुल सलाम है सुदैव काम है निर्वाध स्वरूप है गाद अनुभ है वंगाद रूप है नाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे गंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिभक्त स्वरूप स जय सुदैक नरकं प्रणाश पृथ्वीओल प्रवास है निरुक्त प्रवाह सुदैव सदाए मे भक्त स्वरूप प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है पेखा लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है अजय है भय भूत है दूत है नाश है उदास है दंध है बंध है अभगत है विरक्त है नाश है प्रकाश है निजंत है सुनंत है लेख है लेख है अलेख है पेखा ठा है गाय है संभ है गम है नीला नाद है

मुन मन प्रणाम गुण गण मधाम हर भर गांजु हर नर पर पांच गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड भर नर मांडु गण पवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मधाम अंश जे अंग आसन पांग उपमा पार गात्मित उदार जल थल मांडु देश विश पांडु जल थल महांत देश विश बेअंत गण पवनाश त्रत तरत रास आजन वाह सहंस आजान बाह एक सदाह ओंकार आद कथनी अनाद कलखंड ख्याल गुरभर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात अज जनवात अंजन जगात अंतरंज बात अंटुट भंडार अंठ अपार अठ धर्म अतठ कर्म।

मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्व पर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड से है खलखंड से है अर्ध पर है करुणा कर है जपा जप थपा थप है कृता कृत अमृत अमृत अमृत अमृत करुणा कृत है कृता कृत तरणी धृत है मृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत अमृत अमृत है अजपा कृत अमृत अमृत है नरनायक है कलकायक है विश्व

तुम्बास जस के जा सहीं भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह दाम सिंह शांत रूपे नमो ब्रह्म दत्तंग दत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंब भूते अलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगीय नामे इंद्र पंगी दृगाले अनंगीय कामे एक श्री शांत अजय अलय पया भय पूजुवनाश काश गांज भांग।

संसद सुधारिक संसम अनेक मधिक है, सारे ही देश को देख रहे हो मात, कहू न देखित प्राणपति के। सरी भगवान की भाई कृपा हूं ते करति बिने करति के, माते मदंग जर यर संग अनूप दंग सुरंग सवारी, कोट रंग कुरंग से गुरुत पौन के गौन को जात नवारी, भारी भजान के पूपली विद न्याव शीस न जात विचारी, ते पै तो कहां पै पूपत अंत को नंग पाए पधारी, जीत फिर सब देश दुशान को बाज टोल मृदंग नगारी, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है राज हजारी, पूत भविख भगवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारी, सरी पद श्री भगवान भजे गण अंत को अंत के ताम सुधारी, तीर्थ नान दैत मदान सो संजम नेम अनेक वसीख है, वेद पुराण कदीप पुराण जमीन जवान सुवान के पिख है, पौन हार जद यार सब सो चार हजार के दिखाए, श्री भगवान भयवन भूपत कर दिव ने गण लिखाए, शुद्ध सुबहादुर अंत दास सो सास नाद रजान लेंगे, बारी गुमान पर मन मैं कर पर्वत पंख हरिना लेंगे, तोर रीन मरोर मवासन माध्यम दंगन मान मलाएंगे, सरी पद सरी भगवान कृपा बिनु त्याग जहान निदान चलाएंगे, वीर अपार बड़े बरियार बचारे सार की तार बछैया, तोर देश में लेंद मवासन माध्य जान के मान मलैया, गाड़ी गड़ान को तोड़ नहार सुबातनी जग चार लवैया, साहिब श्री सब को सरनायक जाच कनेक सो एक दवैया, दान देव नंदर साचर भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जते चल मैं थल मैं पाली पल मैं सब थाप थपेंगे, पुन प्रदापन बाढ़ जैत तुन पापन के बो पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिर जग सदर सब अब लोग जपेंगे, मानवेंद्र गजेंद्र नरात बजौंतर लोक राज करेंगे, गोट जनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे, ब्रह्म महेश्वर विष्णु सजी पद अंत बसे जम पास भरेंगे, जे नार सरी पद के परस पग ते नार फिर न दे तरेंगे, कहां पयो जो दो लोचन मुंड के बैठ रहे हो भगत ध्यान लगायो, नहार फिर लिये सात समुद्र न लोग गयो पर लोग गवायो, बात कियो बख्यान तो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो, साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तनि प्रभ पायो, काहू ले पान पूरी तर सिर काहू ले लिंग करे लटकायो, काहू लख्यो अर वाची दिशा में काहू पशा को शीस नवायो।

और भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड पी अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सुत मते पाऊं। सेवक सेख मारे धारिय है, चुन चन सत्र मारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे भरे है, मरण काल का द्रास निवरे है। हू जो सदा हमारे पछा, सरिया सरजु करे हो रक्षा। राख ले हो मह राख नहारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तमह पुरी चतुर्दश कंता। काल पाई ब्रह्मा बबतरा, काल पाई सब जुग अवतरा। काल पाई कर विषन पर गाशा, सकल काल का किया तमाशा।

तो एक की वीर पछाने गड़गड़ के बड़ बड़ की जाने जा बुद करख करा कर तारा प्रजा दर्द तब दी अपारा जब या करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद पेद यार आलम।

इन द लास्ट शब्द फ्रॉम सुखमनी साहिब जिस मन बसे सुने लाए प्रीत इट इज सेड दैट ही इन हूज हार्ट द सॉन्ग ऑफ पीस ड्वेल्स इन हिम द लॉर्ड्स रिमेम्बरेंस इज अवेकन्ड द पैंग्स ऑफ डेथ एंड न्यू बर्थ आर डिस्ट्रॉयड His precious human soul obtains salvation. His fame shall be spotless, and his speech like nectar. The name of God shall now pervade his soul. Sorrow and sickness, fear and doubt will vanish. His acts shall be pure, and men will call him a saint. And his life will be blessed with the highest glory. Nanak says, Because of these virtues, this is called Sukhmani, the hymns of peace.

हरी अमृत है। कदी संसार दे हर कोने विच निगाह मारी है, बिना हरी तो कोई अमृत नहीं दिसदा। फैसला गुरबाणी ने भी दे दिता। कहन लगे नृत मंडल जग साजिया, जिन्ना संसार है जिन्नी दुनिया है जिन्नी लोकाई सारी मृत्यु दे घेरे विच है। ते अमृत दा अर्थ है मृत्यु तो रहित, जो मरे ना। ये सारा संसार ही मृत मंडल है तो फिर अमृत कौन है? गुरु आखन लगे

दर्दन है। इतनी हरी अमृत है कि एक ख्याल करियो, गुरु ने बाणी में एक गल आख दिती, कहने लगे जेड़ा अमृत पींदा है वो भी अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। अमृत पीवे अमृत होए। हम पीने का एक राह नहीं, पीने का अर्थ है अंदर प्रवेश करना किसी चीज का, ग्रासन का अर्थ भी है अंदर प्रवेश करना किसी चीज का। किसी पिजन का अर्थ भी यह है जो अंदर प्रवेश करे। जेड़ा कपड़ा पानी नाल भिजदा नहीं उनकी की निशानी होंदी है, बारिश पैंदी है मनुख रेनकोट पा के तुरिया जांदा है, बारिश पै रही पानी उपर गिर रहा है पर पानी उस रेनकोट के कपड़े के अंदर प्रवेश नहीं कर गया। यो कारण असि आखने एक कपड़ा भिजदा नहीं, तो भिजन का अर्थ भी है अंदर प्रवेश कर जाना, ग्रासन का अर्थ भी है अंदर प्रवेश कर जाना, पीन का अर्थ भी है अंदर प्रवेश कर जाना। तो गुरु आख

दिख रहे हैं। हरि अमृत प्रवेश करते पर इन अखा रही नहीं, वो अखा हो रही जिंदा जिक्र सतगुरु गुरु चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब श्री अस्थाई दीवार ने तो पहला संतर्ज कर रहे हैं। और इस गल का फैसला भी गुरबाणी दे रही है, वो लोहिन केड़े ने

불띠 미약하. 이나 아카비치 이나 내나비치 이나 로에나비치 랍네 프라베이크 능 카르나 진니 데르 수르트 데 내는 능 콜레가 असल लोइंतियों ने इधर इस करना कि ये अखा खुलिया भी होन किसे नू देख भी रही होन ड्राइव कर दिया कोई ड्राइवर रोड नू देख रहा होवे कि अखा खुलिया होन पर सुरत किते होर चली जाए एक्सीडेंट हो जाता है इना लोइना तो देखना ही देखना नहीं असल अखा ने असल लोयन ने सुरत हम देखने सुरत विच प्रभु प्रवेश करे जड़ी चीज सुरत विच प्रवेश कर दी है ना ओई फिर दिस लिए ओई फिर नजरी पहन दी गल तो सुरत विच प्रवेश करन दी गुरु ने आख्या कहने लगे।

गुड़ खुशबू जेड़े हर किसी को मिले, जिस कोल गुना दी खुशबू है, जिंदे कोल मन ते तन विचारा ते विहारा विच मेरे रब दा रंग है, जिंदा जेड़ा प्रभु दे हुकम दी कसवटी ते पवित्र होया है, जिंदी सूरत जड़ी है उंदे विच हरी अमृत समा गया है, ते जिदी है सूरत भला ऐसे मनुख दी जीवन दी तस्वीर की होवेगी, ते लोड़ क्यों पई दो मैं इत्थे रुकना चाहना। संत चौथे पातशाह जी जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आस्था दी वार तों करीब सत पत्रे पहला आउंदे, इन्हां नूं वार दे नाल गाउण दा हुक्म गुरु अर्जन पातशाह जी दे वक्त होया। इतिहास दे मुताबक श्लोक भी वारां दे नाल गुरु अर्जन पातशाह जी ने जोड़े संबंधित कीते। अगे वो शुरू होंगी पर देखना इन्हों का आपसी संबंध की सदगुरु अगे कहते हैं

इस अंतर्द युद्ध का हथियार कीजिए। ज्ञान आप सबन की बाणी अंदर अनेक थावे अंदर दे युद्ध का जिक्र देखने गुरु कहते हैं।

on ne voulait pas être candidat à la fin. Yes, how can I go? मनुख नु देवता बना दे उच्चे अचरण वाला बना दे मुकाबला जेड़ा मुकाबला है उनका आरंभ किया है कौन बने एक किवे बने दी गल सारे आज शनिवार में चल रही मनुख नु देवता बना चल लगे एक और ख्याल करो ये जे रूप किसे गुरु ने बनाना होगा अंदर की गल ना होगी गुरु अंगद पातशाह कहन लगे आ जे सूरज से चंद्रमा ने ना यह केवल बाहर रोशनी करते अंदर रोशनी बिल्कुल नहीं करते अगर आप दीवारा बना दो मजबूत पर्दे ला दो ना सूरज की ना चंद्रमा की रोशनी अंदर आती नहीं भला जीवन के अंदर किवें जाएगी गल तो जीवन की हो रही गुरु कहन लगे जे सौ चंदा उसने ही प्रतीत की प्रोटता गुरु अंगद पातशाह कर कहते जे सौ चंद्रमा चढ़ पे हजारा सूरज चढ़ पैन वो जीवन के अंदर के अंधेरे को दूर नहीं कर सकते इतों भी साबित हो गया कि अंदर के अंधेरे को दूर करने वाला कौन है ज्ञान गुरु अंदर उसकी शब्द ने करनी है गुरबाणी इस जग में चानन कर्म बच्चे मनाए एक और रोशनी है जी जीवन के अंदर प्रवेश कर दी है वो केवल शब्द की बाणी गुरु की रोशनी गुरु आख रहे हैं।

0: अंदर भी रोशनी नहीं पैदा कर सकते, वो इस फूल से चंद्रमा नहीं पैदा कर सकते, वो केवल शब्द ही पैदा कर सकता है जो अज्ञान गुरु ने। कहने लगे मैं दुनिया के लोगों को एक गल समझा देना चाहना, पढ़ो शब्द नाल जुड़ो, बाणी गुरु के नेड़े होवो, देखो वो कमजोर ते निर्बल जीवन जिहड़ा काम खुद लोभ मोह हंकार के सामने हार खा रहे है, दिन रात गोडे पे टेकदा है, दर्द दर भटक रहा है, अज भी देख लो। कहने लगे आओ जे गुरु नाल जुड़ोगे गुरु तुहानू योद्धा बना देगा। अवारी सी जी गुरु तुहानू योद्धा बनाएगा अंदर दे मैदान दा। कहने लगे जेड़े गुरु नाल नहीं जुड़दे उन्हां दी हालत भी दस देना चाहना।
1: नानक गुरु ना चेतवी,
0: फिर गुरु नानक साहिब

देह भगत पूर्ण अविनाशी हौ तुझत बलहारिया रहा। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिन को आया। जाप ताप संयम

गुरु प्यार वाले गुरु स्वरूप साध संगत जी, आप जी वड भागी हो, नित नेम प्रेम भावना श्रद्धा सत्कार सहित गुरुदेव पातशाह

नतमस्तक होके अपनियां हाजरियां लवा रहे हो। गुरुदेव पातशाह जी ने अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विचों निरंकार स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी आप नारायण कला धार जगमय परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो। निरंकारी ज्योत साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने सानू कलयुगी जीवां नू भवजन संसार तो पार होने दे लई ए पावन पवित्र उपदेश बख्शिश कीते ने। आओ इस दे विचार कहन सुनने वास्ते समुची संगत माई भाई हाजरी लवाओ।

हम डोलते बेरी पाप परी है, पवन लगाए मत जाई। सतगुरा ने इस इलाही फुरमान दे विच जग्यासु रूप होके निरंकार दे अगे बेनती जोदनी अरदास कीती है। क्योंकि सिख ने हमेशा ही एक ऐसी शक्ति का आसरा लेना है जिसने सर्वशक्तिमान कहा गया। वास्तव दे विच कलयुग दे विच अनेक अपने आप नूं गुरु कहाउंदे ने, अपनियां शक्तियां दा इवहार करदे ने, मनुखता नूं परमाउंदे वास्ते अनेक प्रकार दे ढंग तरीके वरतदे ने। इसे भी गुरुदेव पातशाह जी कहिंदे ने, सब कहते हैं पाया तात न किन ही कहाया। कोई अपने आप में घट कहाउंदा

0: हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई। साहिब मैं डोलदा हां, मैं कंबदा हां, मैं थिरकदा हां, मैं इस्पत नहीं हां। भई की कारण? पातशाह मेरे जीवन की जे बेड़ी जिहड़ी है ना, यह पापा नाल भरी हुई है। ये जीवन की नौका, ये जिंदगी की नौका, ये जिंदगी की बेड़ी पापा नाल भरी हुई है। क्योंकि पाप करे पंचां के वासरे, पंचां दे अधीन होके मनुख पाप करदा है। किसी विषय की पूर्ति नहीं होई, उसकी पूर्ति दे वास्ते मनुख अनेक प्रकार के पाप कर्म करदा है। औगणा की बेड़ी इसके पैरां विच पै जांदी है। इसलिए यह जीवन रूपी बेड़ी पापां दे नाल लदी होई है, भरी होई है। तो जिहड़ी बेड़ी भर जाए, नको नक हो जाए, वो फिर किनारे नहीं लग सकती है, वो बन्ने पे नहीं लग सकती है। फिर उन्हें की करना चाहिए? तो भाई साहब भाई गुरदास जी ने न बड़े प्यारे बचन बख्शिश किए ने सानू। जैसे बोझ नाव पाई अंगुरी दो पार होए, पार परे पूर सब कुशल अभ्यास है। जैसे एक घरी पाक साल बैठ भोजन के व्यंजन स्वाद के आघात है। जैसे एक घरी पाक साल बैठ भोजन के व्यंजन स्वाद के आघात है। जैसे राजा पाशजन करत जोहार जन, एक घरी पाछे देश भोगता हुआ सात है। भाई साहब कहते जिमें बेड़ी है ना, यह बेड़ी के समान लद लवो, भार लद लवो, पर एक गल का ख्याल करना, बेड़ी लबा लब ना भर जाए कितने। अगर जीवन की बेड़ी में किनारे लाने, तो इसमें खाली रखना पवेगा। ये ठीक है, असं संसार के रही हैं, धियां पुत्र परिवार चाहिए, कारोबार चाहिए, संसार चाहिए, संबंधी कुटुंबी चाहिए, क्योंकि संसार की मर्यादा है। तो संसार की मर्यादा भी रेंगे हुए हैं, मर्यादा पुरशोत्तम भुल जाइए, भगवान में भुल जाइए। तो जो कुछ धन पदार्थ ही है, धियां पुत्र ही ने, भोजन पदार्थ ही सब कुछ, इसे में जिंदगी मन बैठी है, फिर जीवन की नौका डुब जाएगी। भाई साहब जी ने सानू ढंग दसे, कहते जिस तरह कोई मनुख एक घड़ी अपने घर विच रसोई विच लंगर विच जाके बैठ के भोजन छक लवे, कि अठ पैर उसने कोई चिंता कोई फिक्र नहीं होंदा। रज लवे एक बार एक घड़ी बैठ के, तो सारा दिन वधिया लंघ जांदा है। अगर कोई मनुख राजे के पास जाके उसने अपनी कुलश करदा, नमस्कार करदा, राजा प्रसन्न हो जाए, उसने किसी इलाके का मनसबदार साथ देंदा, चौधरी बना देंदा, अहलकार बना देंदा, सूबेदार बना देंदा। एक बारी राजे ने नमस्कार की, सारी जिंदगी आनंद दे नाल बतीत कर ली उसने। फिर सानू की करना चाहिए? तैसे आठ पैर साथ करी में, जो एक करी साथ समागम करे निज घर जात। अठा पैरों में सठ घड़िया होंदिया ने। भाई साहब कहते अठा पैरों के सठा घड़िया कोई मनुख एक करी साध समागम करे, जिहड़ा तुसी कर रहे हो साध संगत गुरु की हजूरी गुरु प्यारियां दी संगत गुरु सवारियां दी संगत सत्तां घड़ियां विचों एक भी घड़ी कोई संगत कर लवे ना ते भाई साहब कहिंदे निज घर जात है अपने सोए स्वरूप रूपी घर विच चले जांदे फिर ओ घर विच रहिंदे आ परिवार विच रहिंदे आ कारोबार विच रहिंदे आ जीवन मुक्त हो जांदा है पर ख्याल करना कि इस जीवन की देवी कितने पापा के भार ना भर जाए विकारा रूपी पत्थर ना दर्द रही है इस देवी दे इसलिए साहब कहिंदे मैं डोलदा हिरदा मेरा कंबदा है बेड़ी पाप भरी है ये पापा के नाल बेड़ी मेरी जीवन की भरी हुई है मता कितने माया का इस चुक झूला लग जाए कई वे देखते हैं समुद्र बेड़े चलते ने बेड़िया चलदिया ने जहाज चलते ने कि बहुता कोई तूफान आ जाए तो तूफान के आन करके ये जीव बेड़ी डुब भी सकती है ते जीवन की तो बेड़ी बिल्कुल छोटी जी है माया का बुला आया इसने खड़का देना इसनू भी अज जो संगत में चले गए तो कोई ग्राह ही ना चले जाए वापस कई वेरी ऐसे कई छोटिया छोटिया गलों तो बड़ी बड़ी प्रेरणा मिल जाती है जेड़े अफगानी सिख ने न कई केसा धारी ने कई केसा तो रहत ने उन्होंने एक असूल है अपनी दुकान खोलते ने दुकान खोल के फिर उन्होंने धूप बत्ती करनी अपनी पाठ पूजा करनी फिर उन्होंने अपने ग्राहक को विहाजना है होवे न मजाल की अपने वो कर्म करके जो रोजाना करते ने पाठ पूजा किसी भी ग्राहक को सौदा दे देन असी तो चोरी छप्पे अमृत वेला होवे तां भी कोई ग्राहक आके फोन कर दे उसे भी चले जाने नितने तो फेर कर लोगे कोई गल नहीं पातशाह गुरु रामदास जी ने शहर निवासियों यह वचन कहा कि भाई पहले तुसी हरिमंदर साहब आना गुरु हजूर बेनती अरदास जोदड़ी करनी है क्योंकि अमृत सरोवर की रचना से पातशाह गुरु रामदास जी ने की है न ते गुरु रामदास जी ने नगरी वसाई गुरु रामदास जी ने यह बत्ती हट्टा बाजार बनाया माई सेवा बाजार बनाया ते गाह कान के कहन लगे सतगुरु जी आप जी ने वसा तो दिता है सानू पर कोई ग्राहक आता ही नहीं ते साहब कहन लगे पहले गुरु घर में आना संगत करनी फिर दुकान खोलनी शामा नू दुकान नू बधा के फिर आके दर्शन करके गुरु दे फिर जाने ते जो ये शुरू किया ना फिर एक दिन आके कहन लगे पातशाह जी हुण ते आप जी की इन्नी बख्शिश हो गई कि प्रसादा छकन का भी टाइम नहीं मिलता जो ही जाके दुकान खोलते हैं दुकान वधाउण तक इन्नी गाहकों की भीड़ रही प्रसादा भी नहीं छकिया जाता सिख ने पहले अपना नितनेम करना फिर अपना किरत करनी है सतगुरु ने देखो किन्नी बख्शिश की है अमृत वेले नितनेम बख्शिश किया तो शामा ने नितनेम बख्शिश किया ये नहीं कहा भी तू अपना कारोबार त्याग दे नहीं सारा दिन अपना काम धंधा करना जो भी गुरु ने बख्शिश किया ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝਕਝੋਲੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਸਤੇ ਬੰਦੇ ਵਫਾ ਕੋ ਵੇਚ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਖੁਦਾ ਕੋ ਵੇਚ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜੋਦਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝਕਝੋਲੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ।
1: ਸਨ ਮੁਖ ਸਿੱਖ ਟੇਟਣ ਕੋ ਆਏ, ਨਿਹ ਚੋ ਦੇਹ ਵਡੇ ਆਈ।
0: ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਧ ਭੇਟਣ ਕੋ ਆਏ। ਸਿੱਧ ਜੋ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੌਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਥ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਈ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਡੋਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਸੋਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਸੋਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਪਿੱਠ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ। بادشاہ جی نشچو دے وڈیائی یہ نشچے مینو آپ جی تے بھروسہ ہے کہ آپ جی مینو وڈیائی بخشش کرو گے اس لیے میں آپ جی دے درشن کرن دے لئی آپ جی نو ملن واسطے آیا ہاں
1: گور تار تار نہاریا
0: اے گرو کرپا کر بخشش کر مینو سنسار تو تار لے جو پہلو بینتی کیتی ہے نا جیدے وچ کلیش دیا لہرا نے بڑے بھیانک رستے نے کرشنا روپی کالی ناگنی اس دے وچ دسن واسطے منہ پساری بیٹھی ہے جل جنتو نے ایک پرکار دے نے یہ سنسار روپی سمندر وچ پانی نہیں ہے تے اگ ہے اگ دے منکھ پاس جائے گا تے سارے جی سارے ہی وہ سبھاؤ ہے تو تسی تے روز ہی پڑھتے ہو نا ایک سروڑ ہے پہلے نواسا پانی پاو کتنے ہی کیا پنک جو منہ پگ نہیں چل رہے ہم دیکھا تہ ڈوبی والے یہ کہندے دیکھے نے ڈبدے ہوئے جنہوں نے گرو دا پلا چھڑ دیتا ہے اس لیے گرو تارن ہار ہے کرن کرن سمرتھ گر میرا جی پران سکھ داتا میرا وہ سرو شکتی مان ہے وہ تارن دے سمرتھ ہے اسے بھی بھائی صاحب کہ کر تارن گرو نانک آیا یہ گرو نانک کل جگی جیوان تارن واسطے آیا یہ نانک نے کیول مہتا کلیان داس جی کا پتر ہی نہ سمجھ لینا یہ کیول سے کیول بے بے نانکی کا ویر ہی نہیں یہ نرنکار ہے یہ آپ اکال پرکھ ہے جس کے سبندھ بھٹان نے بڑے پیار بھج کے بچن کہے اس لیے گردیو پاتشاہ جی کہتے ہیں گرو تار تارن ہاریا

0: मंगल है कि परमात्मा एक है, वो सर्व व्यापक, ओदी हुक्म रूपी कार सारे संसार ते चल रही है, वो सत स्वरूप है। इस करके ओदी प्राप्ति सच्चे गुरु दी कृपा द्वारा ही हो सकती है।
1: आसा महला तीजा।
0: ये पावन बचन आसा राग विच तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी दे उचारण किए हुए हैं।
1: संत तार तीजा।
0: सरलेख उपर संत है, जिवें चौ पदे ते पदे इसे तरह अष्टपदियां। घर तीजा का अर्थ है कि तीसरे घर विच ये शब्द नूं गाउण दी सतगुरु जी हदायत कर रहे ने।
1: साजन मेरे प्रीतमा तुम सह की भगत करे हो।
0: हे सत संगी गुरमुखो प्यारो, हे प्यारे गुर सिखो, हे मेरे प्यारे सत संगी जनो, तुसी रल मिल के सदा ही परमात्मा दी भगती करया करो, क्योंकि भगती तो बिना मनुखा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। भाई रे भगत हीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेवना कीनी बिरथा जन्म गवाया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तो भगती तो हीने जीवन नू बिल्कुल पशुआ वर्गा जीवन दस्या। एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे शुकर सुआन नानक मानो ताहे तन। शुकर कहिए सूर ते सुआन कहिए कुत्ते। साहब कहिंदे ने मनुख दे जीवन विच्चों परमात्मा दी भगती मनफी हो जावे, मगर तां सूरां ते कुत्तियां वाला पाप पशुआं वाला ही जीवन है। इस करके गुरु अमरदास जी कृपा करदे ने, हे मेरे सज्जनो हे प्यारियो, सदा परमात्मा दी भगती करया करो।
1: गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो।
0: सदा ही गुरु दी शरण विच पै के गुरु दी सेवा करो, तां कि तुहानू कीमती नाम रूपी पदार्थ लभ पवे, जिन्हू सतगुरु जी ने कई बार तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। इस तरह भी साडे सामने उस नाम रूपी पदार्थ की जो कीमती इंज कह लीए कि जो अनमोल ओदी कीमत है, कोई दे नहीं सकता। जेड़ा बहुत ही आपां कहिए कि धन दौलत सोने चांदी हीरे जवाहरात की कीमत तो भी उपर है, साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। ऐसा कीमती पदार्थ जिन्हों प्राप्त कीतिया जन्म पदार्थ जीत, ये अनमोल जन्म जो बड़ा कीमती पदार्थ है, किन्नू ही मनुख जित के भाव सफल करके जांदा।
1: भगत करो तुम सहय तेरी जो सह प्यारे पावे।
0: नाल ही सतगुरु जी स्पष्ट कर रहे ने कि उस रब की भगती करो जेड़ी भगती उस परमात्मा नू पौंदी है। हर के गुण हर गाम दे, हर के गुण हर भावन दे, से गुरु ते पाए भगत तेरा मन भावन दे, दर सोहन कीर्त गाम दे। भगती करन वाले भी मेरे मालक दे दर ते पौंदे ने, चंगे लगदे हन।
1: अपना पाना तुम करो ता फिर सह खुशी ना आवे।
0: जे तुसी अपने भाणे विच अपनी मन मर्जी विच चलोगे ते फिर अकाल पुरख वाहिगुरु दी तुहानू खुशी प्राप्त नहीं होवेगी। इस करके सदा गुरु दे भाणे विच परमेश्वर दी रजा विच चलो। गुरु अमरदास जी तां सिखी ओनू मनदे ने, जेड़ा रब दे गुरु दे भाणे विच आ जावे, सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ चोटां खावे। जेड़े अपने भाणे विच अपनी मन मर्जी विच चलदे ने, उन्हां नूं फिर विछड़ के चोटां खाणियां पैंदियां हन।
1: भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे।
0: साहब जी कृपा कर रहे ने कि भगती दा जो प्रेम वाला ये मार्ग है, ये बड़ा बिखड़ा है। जदों गुरु दर ते कोई आके अपना आप समर्पण कर दवे, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ,
1: ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਹਰ ਭਗਤੀ ਚਿਤ ਲਾਵੇ।
0: ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ

0: हे मेरे वैरागी मन, तू बार मुखी वैराग करके पखंड करके किस नू दिखा रहा?
1: हर सोहला तिन साध सदा जो हर गुण गावे।
0: जेड़े जीव हरी दे गुण गाउंदे ने उन्हां नू तां सदा खुशी खेड़े आनंद चाओ वाली अवस्था प्राप्त हो जांदी। उन्हां दे जीवन अंदर सदा ही सोहले खुशी दे गीत गाए जांदे हन।
1: हर वैराग तू छोड़ पाखंडा सो सहो सब किश जाने।
0: ओ परमात्मा ता सब को जानदा है कि तू बार मुखी वैराग करके क्यों पखंड करदा है। ए पखंड छड़ के तू असल वैराग धारण कर। जिवें गुरु कलगीधर पातशाह ने वेख्या कि आखन भीतर तेल को डार सो लोगन नीर बहाए दिखावे। बहुते लोग अखां विच तेल पा के धुप्पे बैठ जाना कि जदों तेल पैण दे कारण अखां विचों हंजू वह तुरदे ने ते चेले कहिंदे ने वेखो जी साडे बाबा जी नूं किन्ना वैराग आया। साहिब कहिंदे इहो जिहा वैराग नहीं, इहो जिहा पखंड नहीं, तू असल वैराग कर। असल वैराग की है कि तू घर परिवार धन दौलत तों नहीं बल्कि विशे वकारा तों उपराम हो। जे विख्या सगली तजी लियो भेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना ते नर माथे भाग। गुर उपदेश गुर सिख ग्रे मैं बरागी सदा, ग्रे तज बन खंड होत ना उधार जी। गुरु का सिख ग्रिस्त विच ही बैरागी है। जदों अपने आप नूं मोह तों ओह उपर कर लैंदा है। बैराग दा अर्थ है उपरामता कि रवे घर परिवार विच पर अपने आप नूं इहदे तों निर्लेप कर लवे।
1: जल थल महियाला एको सोई गुरमुख हुकम पछाणे।
0: ओ प्रभु तां जल थल ते महियल पताल विच हर थां ते है ते फिर आपां कित्थे जावांगे। जिथे भी बैठीए ओहदी याद विच जुड़ जाइए ओही ओ बैराग प्रवान हो जांदा जदों गुरु दे राही परमात्मा दी रजा हुक्म मनुख नूं समझ आउण लग पवे।
1: जिन हुक्म पछाता हरी तेरा सोई सर्ब सुख पावे।
0: जिसने हरी परमात्मा दी रजा नूं हुक्म नूं पछाण लिया ओनूं सारे सुख जेड़े ने प्राप्त हुंदे ने। साहब जी ने दुखां दा कारण भी इहो दस्सिया कि जब लग हुक्म न बूझता तब ही ते दुखिया, गुरमिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। जदों ए रजा विच तुरदा उदों सुख मिलदे ने, जदों रजा तों बाहर हो जांदा है उदों सारे दुख आके इनू ग्रस लैंदे हन।
1: जिहो कहै नानक सो बैरागी अन दिन हर लिव लावे।
0: दूसरे पदे भी सतगुरु जी संपूर्णता कर रहे ने कि तीसरे नानक जी कह रहे ने कि जेड़ा हरी परमात्मा नाल लिव जोड़ लवे ओ घर परिवार विच रह के ही असल विच उपराम है, बैरागी है। कि दूसरे पासे कोई सारा कुछ छड के फिर भरमां विच पवे बंधना विच रवे ते साहिब कहिंदे बैरागी बंधन करे तांको बड़ो अपाग। जे बैराग विच पै के फिर भी बंधना विच पिया, घर छड्या पर अपनी एक कुटिया नाल मोह पा लिया, बच्चे छड़े सेवादारां नाल मोह पा लिया, धन पदार्थ त्यागया पर अपनी एक निकी जी जेड़ी सेली टोपी सी ओदी चिंता ही सताई जा रही है। इस करके साहब कहिंदे सब कुछ छड के बैराग धारण कीता ते फिर बंधना विच पै गया। वेखो कई ते पशु पंछियां नाल ही मोह करी जांदे ने। इस करके साहब कहिंदे ने बैरागी बंधन करे तां को बड़ो अपाग। इहदे नालों होर माड़े भाग किहदे हो सकदे ने।
1: जह जह मन तू धामदा तह तह हर तेरा नाले।
0: हे मेरे मन तू जिथे जिथे भी दौड़ के जाना हरी परमात्मा तां उथे भी तेरे नाल है, पर तू परमात्मा दे नाल नहीं। इस करके गुरु अमरदास जी अपने मन नूं संबोधन करदे ने, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे तू उस परमात्मा दे नाल रिया कर
1: मन सियाणप शोधिया गुर का शब्द संभाले
0: ये मेरे मन जे तू सारियां चतराइयां सियाणपां छड के गुरु दे शब्द दी संभाल कर लग पवे फिर वो नेड़े वसदा परमात्मा।